0: है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हटके जरा बचके ये है बॉम्बे मेरी जान।
1: गीता, दूत एंड मुकेश ब्रॉट अस a WFMU release called Global Spectacular. In the background, I have the obligatory Mama's track. That was the hottest thing many years ago, Amaria. Let's listen.